0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274 491 442।

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 डॉकवर्थ लेन, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।
1: पुराना सुना बेचना है।

0: छः और आठ बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन हैं। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेज, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: Looking ahead over the coming days, here's what's happening. First, in Bradford, Beyond the Barricade is at St George's Hall on June 19th. Also in Bradford, Sing Along of the Greatest Showman comes to St George's Hall on the 20th of June. Over in Calderdale, The Kooks are live at the Peace Hall in Halifax on the 19th of June, and Belle and Sebastian perform there on the 21st of June. In Leeds, Lily Allen is at the First Direct Bank Arena on 21st of June. In Manchester, the B52s and Devo bring their Cosmic De-Evolution tour to the AO Arena on 21st of June. Over in East Lancashire, Luther Live is at Burnley Mechanics on the 19th of June. In Derby, Little Shop of Horrors continues at Derby Theatre until the 20th of June. In Milton Keynes, The Karate Kid the Musical is at Milton Keynes Theatre from the 16th to the 20th of June. And that's your Sunrise Radio event diary.

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म का किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: पुराना सोना बेचना है बहुत चंगे रेट पर देने।
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता।
2: चाचा जूलर्स ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. A Sunrise Radio hit of the hour.
1: साहेबान कदरदान मेहरबान दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब आपके सामने तशरीफ ला रही हैं आगरा की अजीम फनकारा मलिका हुस्न नूर नजर मोहतरमा मोहिनी

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स। तेरी
2: गलियां कुमी, ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां, पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो, ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 आले, जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहनती लाए, सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड, छापा ते बंगा नहीं, कोई मजदूरी नहीं, ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है, ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: गलियां गलियां कुमी ते पैर ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
3: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935

0: जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉन्गलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: ਜੁਤੀਆਂ ਵੀ ਕਸੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਓਹੋ, ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ। ਚਾਚਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਚਾ? ਚਾਚਾ ਜੂਲਰ ਓਕਲੈਂਡ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 9 ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਫਰ ਕੱਢੀ ਮਾਰੀ। ਨਕਨਤੀ ਲਈ ਸਿਰਫ 2 ਪੌਂਡਾਂ ਨਾਲ, ਕਾ

0: अपने ख्वाबों का घर ढूंढ रहे हैं ब्रेडफोर्ड में, पेश हैं बेलव्यू रेजिडेंसेस। 4, 6 और 8 बेडरूम पर मुश्तमिल शानदार घरों का नया मजमुआ जो अब फरोख्त के लिए दस्तियाब है। खूबसूरत और मुकम्मल तौर पर फ्रंच्ड इंटीरियर्स, कुशादा रिहायशी जगहें और मुकम्मल कारपेटेड कमरे जो जदीद खानदानी जिंदगी के लिए बेहतरीन है। महफूज इलेक्ट्रॉनिक गेटेड पार्किंग और पुरसकून माहौल। बेलव्यू रेजिडेंसेस, लग्जरी, कुशादगी और स्टाइल। अपने देखने का बंदोबस्त करने के लिए आज ही 01274-288-252 पर कॉल करें।
1: तेरी गलियां
2: कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्नाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274-488-935।
4: The classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: कफन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: ਗਲੀਆਂ ਘੁੰਮੀ ਤੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਕਸੀ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਸਤਾ ਸੋਨਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਓਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਚੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਨਾ। ਚਾਚਾ ਕਿਹੜਾ ਚਾਚਾ?
3: ਚਾਚਾ ਜੂਲਰਸ ਓਕਲੈਂਡ ਬ੍ਰੈਡਫੋਰਡ 935।
4: My favorite radio station, Sunrise Radio. I now I can listen on the move via the Sunrise smartphone app. We love Sunrise Radio. The greatest station, radio station in the world. Sunrise Radio. Let's get this show on the road. This is your number one radio station. Tune in and rip the knob off. Headphones on, headphones on.
5: Microphone in position.
6: Microphone in position.
5: Watch what you're doing. Decks on.
6: Decks on.
5: The tapes on.
6: Tapes on.
5: Cue jingle.
6: Cue jingle.
7: On 103.2 FM in your

इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हेलीफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नले, डार्विन, नेल्सन, अक्रिंगटन, मिल्टन कीन्स में आप सुन सकते हैं और चंद दिनों के बाद आप डर्बीशायर में भी सुन पाएंगे। अगर आप एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पर सुनना चाहें तो भी आप सुन सकते हैं। और अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, संडा रेडियो को सुनना चाह रहे हैं, तो आप हमें वेबसाइट पे सुन सकते हैं। हमारी वेबसाइट का एड्रेस रहेगा www.sunriseradio.fm पर। आप कहीं भी हूं सुन सकते हैं। आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा। अगर खुदा न खास्ता आप बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे। तो दोस्तों, मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक 2 बजे तक। मिले जुले गीत होंगे और आपकी डेडिकेशन होगी। तो दोस्तों, अब जो वक्त है वो बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम हो चुका है और कमर्शियल के बाद आप छोटी सी इवेंट्स डायरी सुनेंगे। उसके बाद आप सुनेंगे हिट ऑफ द आवर और हिट ऑफ द आवर की ये कवाली आप सभी सुनने वालों के नाम होगी। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद छोटी सी इवेंट्स डायरी, उसके बाद हिट ऑफ द आवर, उसके बाद आपसे मिलते हैं।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274-056-014। सोफी ज्वेलर्स। तेरी गलियां गलियां
2: गलियां गलियां कुमी ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274-488-935।
4: Looking ahead over the coming days, here's what's happening. First, in Bradford, Beyond the Barricade is at St George's Hall on June 19th. Also in Bradford, Sing Along of the Greatest Showman comes to St George's Hall on the 20th of June. Over in Calderdale, The Kooks are live at the Peace Hall in Halifax on the 19th of June, and Belle and Sebastian perform there on the 21st of June. In Leeds, Lily Allen is at the First Direct Bank Arena on 21st of June. In Manchester, the B-52s and Devo bring their Cosmic De-Evolution Tour to the AO Arena on 21st of June. Over in

0: अभी आप नुसरत फतेह अली खान और साथियों की आवाज़ों में। दोस्तों आपने हिट ऑफ द आवर सुना और अब चलते हैं साथ में टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक।
0: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं इस वक्त 11:40 यानी कि 11:40। तो चलते हैं जनाब अगले गीत की जानिब। प्यारा सा गीत आप प्यारे सभी सुनने वालों के नाम।

0: ये थी राज खन्ना फिल्म से लिया हुआ गीत अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाजों में दोस्तों आपने सुना। इसके साथ ही चलते हैं टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक।
0: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 11:46 यानी कि 11:46। तो जनाब वाजिद भाई हडर्सफील्ड से फ़ोन किया आपने, शुक्रिया आपका फ़ोन करने का। आने वाला गीत आपके नाम करूंगा और उसके बाद खान साहब बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का, जनाब आपके नाम भी करूंगा। बहुत अच्छा लगा अपने भाई से बात करके। उसके बाद तनवीर अख्तर साहब आपने फ़ोन किया, थोड़ी देर के बाद आपके लिए भी गीत प्ले करेंगे। उसके बाद हीरा खान साहब आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया आपका भाई फ़ोन करने का। आपके नाम भी करते हैं इस प्यारे से गीत को। सदाबहार पुराना गीत होगा कमर्शियल के बाद, और उसके बाद जनाब स्पेशली गुलाम भाई के नाम करेंगे और सफीउल्लाह भाई के नाम करेंगे, चौधरी मुनीर साहब चक्की वाले और महबूब अलाई साहब और दीगर तमाम दोस्तों के नाम करेंगे।

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: गलियां गलियां कुमी ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहने तीला सिर्फ 2 पाउंड ना कानस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नी कोई मजदूरी नी ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन टेलीफोन 01274488935।
4: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewellery. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274 488 935.

जी दोस्तों, अभी आपने किशोर कुमार की सदाबहार प्यारी सी आवाज में आपने प्यारा सा गीत सुना दोस्तों। और अब चलते हैं अगले गीत की जाने। प्यारा सा गीत है और इस गीत को खान साहब आपके नाम करेंगे और तनवीर अख्तर साहब शुक्रिया फोन करने का आपके नाम भी करेंगे। और इसी गीत को जनाब गुलाम भाई आपकी जानिब से आपके स्टाफ के नाम करेंगे और आपके साथ साथ प्यारी बहना सादिया जी, आजा जी आपके नाम भी करेंगे और साइमा जी आपके नाम भी करेंगे और दीगर तमाम दोस्तों के नाम करेंगे जो इस वक्त सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं अलका याग्निक और उदर नारायण को।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों, प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं कि प्रोग्राम का पहला हिस्सा आप दोस्तों ने पसंद किया होगा और कोशिश होगी इस आवर में आपके लिए अच्छे और प्यारे से गीत पेश किए जाएं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं हिट ऑफ द आवर, और हिट ऑफ द आवर का मस्ती भरा गीत आप सभी सुनने वालों के नाम।
1: Hit of the Hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6 and even 8-bedroom homes. Call 0127 428 8252.
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the Hour.

0: क्या गाना था लता, आप मज जाते हैं, लता जी का नाम आ गया। अलका याग्निक और कमर सानू की आवाजों में दोस्तों आपने प्यारा सा गीत सुना, और आप चलते हैं टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 12:13, यानी कि 13:12, और जनाब अब्दुल कयूम साहब फ्राइजिंग हॉल से आपने फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। आप कमर्शियल का टाइम हो गया है, कमर्शियल के बाद आप की जानिब से आपके दोस्तों के नाम गीत होगा। नदीम मंसूर साहब बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का, मेरे भाई आप से बात करके अच्छा लगा, आपके नाम भी गीत करेंगे और आपके साथ साथ इसी गीत को प्यारी बहना सादिया जी आजा जी आपके नाम भी करेंगे, और मलिक इम्तियाज़ साहब आपकी पूरी टीम इकमाज मनीर वसीम इमरान मुजाहिद अल्लाह देता हुमैर बाबर इफराज आप सभी दोस्तों के नाम, और इसी गीत को नज़र करना चाहूँगा मूना जी आपकी भी और दीगर तमाम दोस्तों के नाम। जनाब गुलाम भाई आपकी जानब से आपके पूरे स्टाफ के नाम, और आबिद भाई आप भी काम में मसरूफ़ हैं जनाब, और आपके नाम भी करेंगे और आपकी जानब से आपके स्टाफ के नाम भी करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत होगा, उसके बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है, सुनते रहिएगा।
2: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक, गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं, टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
4: Are you based in the UK? Are you a content creator, streamer, podcaster, gamer, influencer, or maybe you've always wanted to become one?
5: Then it's time to join the Sunrise Creator Network, powered by Sunrise Radio, the number one Asian hit music station. As part of the network, you'll receive extra publicity, marketing support, promotion across our radio, digital, and social media platforms, opportunities to grow your audience, collaborate with other creators, and build your personal brand.
4: Whether you're just starting out or already creating content, we're here to help you get seen, get heard, and grow faster. Join a community of creators supporting creators and take your content to the next level.
5: To apply, simply visit www.sunrise.radio and complete the Creator Network application form. That's www.sunrise.radio. Applications are open now for creators across the UK.
4: The Sunrise Creator Network, helping the next generation of creators grow, connect, and succeed.

जी दोस्तों, अभी आपने कमर सानू और अलका यज्ञ की आवाजों में प्यारा सा गीत सुना, तो चलते हैं एक और प्यारा सा गीत आप दोस्तों के लिए पेश करते हैं जो इस वक्त संदा रेडियो की निशात को सुन रहे हैं। तो इंजॉय कीजिएगा अनुदा पडवाल और पंकज उदास की आवाजों में ये प्यारा सा गीत।

0: जी दोस्तों, अभी आपने पंकज उदास और अनुदा पडवाल की आवाज़ों में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। तो चलते हैं जनाब, अब कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब, और कमर्शियल के बाद मन कर रहा है थोड़े मस्ती भरे गीत हो जाए जनाब। ये तभी सिलसिला होगा जब जनाब कमर्शियल के बाद ही चलते हैं, सुनते हैं इन प्यारे से गीतों को। तो चलते हैं जनाब अब कमर्शियल की जानिब, और कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे एक सदाबहार बहुत ही प्यारा गीत, मस्ती भरा गीत आप सभी सुनने वालों के नाम। तो चलते हैं, सुनते हैं।
1: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
2: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
1: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
2: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
3: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत।
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।

विनोद राठौर और साजन सरगम की आवाजों में दोस्तों आपने प्यारा सा गीत सुना। एक और प्यारा सा गीत सभी सुनने वालों के नाम

चंद्र नारायण और अलका याग्निक की आवाजों में दोस्तों आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। और प्यारी बहन जीत कौर आपने फोन किया, शुक्रिया फोन करने का मेरी बहन। थोड़ी देर के बाद आपके लिए अच्छा सा प्यारा सा गीत प्ले करूंगा, फिलहाल आने वाले गीत से दिल बहलाइएगा। और इसी गीत को इकरा आप सुनना चाहती हैं, नजमा इफ़त नाजिया उमीदा रुबीना बुशरा तज़ीम जाहिदा और साइमा के लिए उनके नाम करेंगे, और दीकर तमाम दोस्त जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशात को सुन रहे हैं उनके नाम करेंगे।

0: लता जी और कुमार सानू की आवाजों में। दोस्तों आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और इसके साथ ही चलते हैं टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो योर साउंडट्रैक योर टाइम चेक।
0: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं इस वक्त 12:46 यानी कि 12:46। तो चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा सदाबहार गीत होगा। दिनेश भाई फ़ोन करने का शुक्रिया, आपके नाम गीत करेंगे। और अब्दुल क्यूम साहब फ्राइजिंग हॉल वाले आपके नाम, नदीम मंसूर साहब और खान भाई और जनाब ईरा खान, वाजिद भाई एडर्सफील्ड से और तारिक जुल्फी साहब और चौधरी मुनीर साहब चक्की वाले और जनाब सफीउल्ला भाई और ग़ुलाम भाई और दीगर तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सन्ना रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है। सुनते रहिएगा।
2: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है।
3: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
2: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
3: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
4: नफसें जायकतुल मौत।
5: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300 ब्रैडफोर्ड 7230300।

झूमे दिल मेरा जाने बहार आएगा। और मेजर यूसुफ साहब फोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, आपने जिस गजल की फरमाइश की हमारे सिस्टम में नहीं है, मैंने बहुत ढूंढी, मैंने कहा मेरे भाई ने बड़ा जोर लगा के इस गजल का कहा था और कभी फरमाइश करते नहीं है, आज फरमाइश की, तो माजर चाहता हूँ कि वो गजल मौजूद नहीं है हमारे सिस्टम में, वरना मैं अपने भाई के लिए ज़रूर लगाता। तो एनीवे जो गीत मैंने फिर जल्दी में क्यों करके रखा है, उम्मीद रखूँगा कि आप इसे पसंद करेंगे, अच्छा गीत है, यकीनन आपको ये पसंद आएगा। मेजर यूसुफ साहब बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का, और इस गीत को एंजॉय कीजिएगा। उसके बाद दिनेश भाई आपके नाम भी करते हैं, नसरीन साहब आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया आपका भी, आपके नाम भी और दीकर तमाम दोस्तों के नाम करते हैं जो इस वक्त सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत।

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सुनना रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है और प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम के दो हिस्से आप दोस्तों ने पसंद किए होंगे और कोशिश होगी इस आवर में भी आपके लिए अच्छे और प्यारे से गीत पेश करें। तो फिलहाल जो गीत कवाली हम प्ले करने वाले हैं वो प्यारी बहना सादिया जी आपकी फेवरेट है, आपके नाम करते हैं और आपकी तरफ से आजरा के लिए प्ले करते हैं और साथ में ये इन शेरियों की भी फेवरेट है, नजमा, इफ़त, नाजिया, उमीदा, रुबीना, बुशरा, इकरा, ताजीम, जायदा और साइमा आपके नाम भी करेंगे। और इस वक्त बाबर शाह पे तीन शहजादे काम कर रहे हैं, बशारत अली, सिकंदर अली और आरिफ अली, और वहाँ एक बहुत ही प्यारी शख्सियत बैठी हुई है, बलाल साहब, तो आपके नाम भी बलाल साहब करेंगे और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी करेंगे और सभी सुनने वालों के नाम करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं उस्ताद जोजी अली खान की आवाज़ में ये प्यारी सी कवाली आप सभी सुनने वालों के नाम।
1: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. A Sunrise Radio hit of the hour.

0: जी दोस्तों, अभी आपने उस्ताद जोजी अली खान और साथियों की आवाजों में बहुत ही प्यारी सी कवाली सुनी, और इसके साथ ही चलते हैं टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 1:13, यानी कि 13:01। तो चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानेब। कमर्शियल के बाद दोस्तों आप सुनेंगे एक प्यारा सा गीत सभी सुनने वालों के नाम, तो चलिए सुनते हैं कमर्शियल।

दोस्तों, अभी आपने कुमार सानू और अनुजा पडवाल की आवाज में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना। और अब हमें अब्दुल रहमान साहब, आपने फरमाइश की, जो गीत आपने कहा वो गीत हमारे सिस्टम में है, हम आपके लिए प्ले करते हैं और सभी सुनने वालों के लिए प्ले करते हैं। अब्दुल रहमान साहब, मैंने कहा कि जनाब दुखी गीत क्यों सुन रहे हैं, तो कहने लगे यार कोई ऐसी बात नहीं है, वैसे ही दिल कर रहा है इस गाने को सुनने का। तो ठीक है जनाब, एंजॉय कीजिएगा, हम सबको दुखी कर दिया आपने ये गाना लगवा के।

0: जी दोस्तों, अभी आपने प्यारा सा गीत सुना आशा भोसले और कुमार सानू की आवाज़ों में। और इसके साथ ही दोस्तों वक्त हुआ चाहता है कमर्शियल का। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा। प्यारी बहना सादिया जी, आपका फेवरेट गीत आपके नाम करेंगे, आजरा के नाम करेंगे और कंवल साहब आपके नाम करेंगे, और इसी गीत को जनाब दिनेश भाई आपके नाम करेंगे, और प्यारी बहना जीत कौर आपके नाम भी करेंगे, और गुलाम भाई आपकी जन्म से आपके स्टाफ के नाम होगा, और बाबर शाह पे तीन शहजादे जनाब काम कर रहे हैं, बशारत अली, सिकंदर अली, आरिफ अली, उनके नाम भी, और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी करेंगे। और इसके साथ साथ जनाब नदीम मंसूर साहब आपके नाम भी करेंगे, और इसी गीत को जहाँ कहीं भी आप सन रेडियो की निशात को सुन रहे हैं तो आपके नाम करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद प्यारा सा गीत, उसके बाद आप दोस्तों से मिलते हैं, सुनते रहिएगा।
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: Kullo nafsen zaiqatul maut.
4: Muslim funeral service mein kafan, dafan, phoolon ka intizam islami shariat ke ain mutabik ghusl e mayyat ke liye aurat aur mard maujood hain. Top quality granite marble ke headstones aur full cover ko 30 saal ki guarantee ke sath banwane ke liye bhi Muslim funeral service ka naam yaad rakhe. Muslim funeral service, 4 Darfield Street of Lumland, Bradford 1. Telephone 723030, that's Bradford 723030.
5: 24 hours a day. 103.2. This is Sunrise Radio.

0: जी दोस्तों, अभी आपने अलका याग्निक और नदीम की आवाजों में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना जनाब आयशा एल्बम से लिए हुआ गीत। और अब्दुल रहमान साहब, आपने फिर फ़ोन किया, माजर चाहते हैं, आपकी कॉल नहीं मिल पाया हूँ, उसके लिए माजर चाहता हूँ। अगर अभी आप कॉल करेंगे तो मैं ले पाऊँगा। और चौधरी मुजफ्फर साहब, फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आपके लिए भी थोड़ी देर के बाद गीत लगाता हूँ, क्योंकि अभी जोहर की अजान का वक्त हो चुका है। और उसके बाद गुलाम भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, शुक्र है कि आपको प्रोग्राम पसंद आया, शुक्रिया मेरे भाई। और अब जैसा कि मैं कह रहा था कि वक्त जो है हमें बता रहा है कि जोहर की अजान का हो चुका है, तो चलते हैं जनाब, सुनते हैं जोहर की अजान। उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं, सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मन पसंद सनराइज रेडियो के संग।
1: ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनुवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई।
1: जी दोस्तों साथियों, अभी आपने जोहर की अजान सुनी और अब इसके साथ ही जनाब अब्दुल रहमान साहब आपने फिर फ़ोन किया, शुक्रिया आपका, और आपने अब फिर फरमाइश कार्ड डाली है तो ज़रूर आप की फरमाइश पूरी करेंगे जनाब। थोड़ी देर इंतज़ार कीजिएगा आप, क्योंकि मैंने गाना एक क्यू करके रखा हुआ है, वो लगाऊंगा और उसके बाद फिर जनाब आप की फरमाइश का गाना जो है वो ज़रूर प्ले करूँगा। आप सुनने वाले हूँ से ही और आप दोस्तों की खुशी का हमें जो है ख्याल होता है, एहसास होता है, आप दोस्तों के लिए ही प्रोग्राम पेश करते हैं ताकि आप दोस्त खुश रहें। तो जनाब आपके ज़रूर आपकी पसंद का गीत आपके लिए प्ले करेंगे। तो चलते हैं अब जनाब अब्दुल रहमान साहब, आने वाला गीत भी बड़ा प्यारा है, वो आपके नाम करते हैं और फिर उसके बाद आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। चौधरी मुजफ्फर साहब आपके नाम भी करते हैं जनाब, और मेजर यूसुफ साहब आपके नाम भी करते हैं जनाब, ग़ुलाम भाई आपके नाम भी करते हैं, और जनाब आपके साथ साथ दिनेश भाई हैं उनके नाम भी करेंगे, और इसके साथ साथ नदीम मंसूर हैं उनके नाम भी करेंगे, और हीरा खान साहब और तारिक जुल्फी साहब और सफीउल्ला भाई और दीगर मेरे प्यारे दोस्त जनाब चौधरी मुनीर साहब चक्की वाले उनके नाम भी, महबूब अलाई साहब उनके नाम भी और दीगर दोस्तों के नाम भी करेंगे। तो चलते हैं, पहले टाइम चेक कर लेते हैं।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: जी दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं इस वक्त 1:45, यानी कि 1:45। तो चलेंगे जनाब कमर्शल की जानिब। कमर्शल के बाद आप सुनेंगे एक बहुत ही प्यारा सा गीत, जो उम्मीद रखता हूँ आप सभी दोस्त जो हैं उसे पसंद करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शल, कमर्शल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है, सुनते रहिएगा।
3: My favorite radio station, Sunrise Radio.
4: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move via the Sunrise Smart.

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पी आए, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: कुल्लो नफ्सेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 10 ब्रैडफोर्ड 7230 30।

सुरेश वाटकर और कविता कृष्णमूर्ति की आवाजों में दोस्तों आपने प्यारा सा गीत सुना। और अब्दुलरहमान साहब, प्रोग्राम का आखिरी जो गीत होगा आपने इस गीत की फरमाइश की तो आपके नाम करते हैं जनाब, शुक्रिया प्रोग्राम में शमूलियत का। और ये गीत मेरी जानिब से सभी सुनने वालों के नाम भी होगा। और दोस्तों ये प्रोग्राम का आखिरी गीत है, इसके साथ ही मैं आमिर शहजाद आपसे इजाज़त चाहूँगा। अगर अल्लाह ने चाहा और ज़िंदगी ने वफा की तो आपके साथ जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगवान एंड गुड बाई।

0: Are you based in the UK? Are you a content creator, streamer, podcaster, gamer, influencer? Or maybe you've always wanted to become one?
1: Then it's time to join the Sunrise Creator Network, powered by Sunrise Radio, the number one Asian hit music station. As part of the network, you'll receive extra publicity, marketing support, promotion across our radio, digital and social media platforms, opportunities to grow your audience, collaborate with other creators and build your personal brand.
0: Whether you're just starting out or already creating content, we're here to help you get seen, get heard and grow faster. Join a community of creators supporting creators and take your content to the next level.
1: To apply, simply visit www.sunrise.radio and complete the Creator Network application form. That's www.sunrise.radio. Applications are open now for creators across the UK.
0: The Sunrise Creator Network, helping the next generation of creators grow, connect and succeed.
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230303 ब्रेडफोर्ड 7230303 जीरो।

0: शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लू नफसेन जायकातुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दैट्स ब्रैडफोर्ड 7230300।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Are you based in the UK? Are you a content creator, streamer, podcaster, gamer, influencer? Or maybe you've always wanted to become one?
3: Then it's time to join the Sunrise Creator Network, powered by Sunrise Radio, the number one Asian hit music station. As part of the network, you'll receive extra publicity, marketing support, promotion across our radio, digital and social media platforms, opportunities to grow your audience, collaborate with other creators and build your personal brand.
2: Whether you're just starting out or already creating content, we're here to help you get seen, get heard, and grow faster. Join a community of creators supporting creators and take your content to the next level.
3: To apply, simply visit www.sunrise.radio and complete the Creator Network application form. That's www.sunrise.radio. Applications are open now for creators across the UK.
2: The Sunrise Creator Network, helping the next generation of creators grow, connect, and succeed. Indeed.

आज कॉलेज का आखिरी दिन है और आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ सोच रखा है, लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है। नो रियली आई मीन इट। और आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आ रहा है,

0: सामान मकिया पी आए आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है
1: तुसी फिकर ना करो जी हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
0: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: नहीं जी, अगर जेवर पाकिस्तान ज्वेलर्स के हों तो फिर कहाँ की महंगाई। चूड़ियाँ, कांटे, अंगूठियाँ, हार और ब्राइडल सेट के अलावा हर किस्म का जेवर बेहतरीन डिजाइनों में और इंतहाई मुनासिब कीमतों पर पाकिस्तान ज्वेलर्स से खरीदें और फिर देखें। पाकिस्तान ज्वेलर्स, 1 Dockworth Lane, ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन नंबर 01274491442।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रैडफोर्ड 7230300।

0: As you say, sunshine.
1: Sunshine? कहाँ से ढूंढ कर लाते हो तुम ये सब प्राचीन वर्ड्स?
0: जहाँ से मैं आया हूँ.
1: ओह, तो आप यहाँ क्या लेने आए हैं?
0: प्यार.
1: Just a tip. हमारी दुनिया में प्यार व्यार नहीं होता, तो शायद आपको खाली हाथ जाना पड़े, you know?

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पी आए आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है
3: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
2: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
3: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744462 or 077 900 3535. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
4: Ladies and gentlemen,
5: thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
6: Number one.

0: listening to Sunrise Radio, the greatest Asian radio station in the world. Sunrise Radio, enjoy!
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
4: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।

0: पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: कुल्ला नफसेन जायकातुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 723030 दास ब्रेडफोर्ड 723030।
4: My favorite radio station, Sunrise Radio.
5: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move via the Sunrise smartphone app.
6: We love Sunrise Radio.
7: The greatest station, radio station in the world. Sunrise Radio.
8: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you?

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord Lord, you can trust.
2: कुल्लो नफसेन जायकतुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कवर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रैडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230 30 दास ब्रैडफोर्ड 7230 30.
4: Ladies and gentlemen,
5: thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
6: Number one.

0: ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरे पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: लुकिंग फॉर अ क्वालिटी होम टू रेंट
3: व्हेदर यू नीड अ 1, 2 or 3 bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.

0: पैरन ये जुतियां भी कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कानस लाने ना 1 पाउंड छापा दे बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230300 दास ब्रेडफोर्ड 7230300।
3: Ladies and gentlemen,
4: thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.
5: Number one.
6: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
7: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?

0: tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
1: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 ब्रेडफोर्ड 7230303 जीरो।